हमारी प्रार्थना का उत्तर दे राजा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं जिस रात के समय में हमारे देशों को, हमारे कलिशाओं को, हमारे एसपी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का ताबा इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने में मदद कर और अन्य अन्य लोगों को जुड़ने के लिए मदद कर और तेरी महिमा करने के लिए मदद होने दे प्रभु। हमारे लोगों की प्रार्थना में यूज कर ताकि तेरे राज्य बनने पाए, तेरे लोग विश्वास में आने पाए। जो अंधकार के शक्ति ने लोगों को गचड़ के रखा है ऐसे लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी शांति बनाए रखना प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते बुराई दुष्टाई दूर कर देना प्रभु और शांति का आत्मा मांगते, एक दूसरे के लिए तसल्ली होने का आत्मा मांगते, एक दूसरे को क्षमा का हृदय मांगते, बुराई नहीं लेकिन एक दूसरे को मदद करे, सहायता करे, प्रेम करे, ऐसा तेरा वचन कहता है प्रभु, मांगते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद ओरा बारा शिखर बारा शंदरा बारा हरिखंदा बारा कुंदबुरु शिकिरी बिदे शबारा बारा हरिखंदा बारा कुंदबुरु शिकिरी बिदे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम विश्वास से जब तेरे पास मांगते तो तुम्हें उत्तर देता है प्रभु, तू उत्तर देता है, तू कभी हमें छोड़ता नहीं ना कभी त्यागता है प्रभु। ऐसा तेरा वचन कहता है प्रभु, तू महान है, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू धन्यवाद के योग्य, तू आदर के योग्य प्रभु। यस प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद राजा। ओरा बरा शिखरा बरा शंदरा बरा हरिखंदा बरा कुंदबुरु शिकिरी बिरे शबारा बाबा इरा बरा हरिखंदा बरा कुंदबुरु शिकिरी बिरे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तू महान है, तू सुंदर है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तू महान है, तू सुंदर है, तू राजाओं का राजा। आइए हम आज वचन की तरफ जाते, हम देखेंगे जॉन चैप्टर 15 का वचन, लुक चैप्टर 15, लुक का 15 हम 13 का वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। हम पढ़ेंगे 15 का 11 से वचन पढ़ेंगे। जैसे एक उड़ाव पुत्र था, एक सेनापति था, एक राजा था, उससे दो बच्चे थे। छोटे ने पिता से कहा, ए पिता, हम 15 में 11 से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनसे उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीतते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति में उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश से बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। देखिए, आज हम सीख सकते हैं, एक मनुष्य के दो पुत्र होते हैं और उसमें से जो छोटा बेटा होता है और सब कुछ अपने पिता अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला जाता है, सब कुछ लेके जाता है और अपने पिता का घर छोड़ के चला जाता है। कई बार वो फंस जाता है, कई बार उससे गलती कामें हो जाती है,
दुष्टाई में बुराई में फंस जाता है। लेकिन एक दिन उसको ऐसा होता है कि मैंने पिता के विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम किया, प्रभु को दुख दिया, पिता के विरुद्ध गया, अपने नम्र होकर प्रभु के पास फिर आता है। आज हम और आप भी ऐसे ही है, हमारे जीवन में भी बहुत सारे गुनाह हुआ, गलत कामें हुई, कई लोगों ने तो हमें छोड़ भी दिया, कई लोगों ने हमारी निंदा की, और हम प्रभु के विरुद्ध जाकर गलत गलत जगह फंस गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमें प्रेम किया, हमारे पापों को लिया, हमारे दर्द को लिया। इतना ही नहीं, उसने हमें अपने स्वर्ग राज्य का वारिस भी बनाया। हमारी माता भूल सकती है, पिता भूल सकते, दोस्त लोग भूल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं। वो हमें हमारे जीवन में हमें अच्छा अच्छा आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु से रुठ जाते, दुखी हो जाते और प्रभु से दूर भागते। वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे दूर हो जाए, मेरे से गलत हो जाए, गलत मार्गों पे चले। आज यही उड़ाव पुत्र की दृष्टांत यही कह रहा है। वो पिता अपना बेटा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है, सब कुछ खत्म भी करके आता है, लेकिन पिता हमेशा उसका इंतजार करता रहता है। आज तुम्हारे हमारे लिए अपना पिता भी ऐसे ही इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे आएंगे। जहां भी हम भटक गए, दूर हो गए, हम प्रभु से करीब आए, क्योंकि प्रभु ने गले ही नहीं लगाया, उसके लिए अच्छे भोजन दिया, अच्छा खाना दिया। इतना नहीं, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए, मखमल के वस्त्र, अच्छे शुभ्र पवित्र कपड़े पहनाना चाहता है प्रभु। आज तुम्हें और हमें प्रभु पवित्र कपड़े पहनना चाहता है। आज हमें लग रहा है दुखी है, निराश है, हमें प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन आज का वचन प्रभु आज हमें कह रहा है कि वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारी हमें गले लगाना चाहता है, हमें वो फिर से भरना चाहता है, फिर से हमें वो हमारे ऊपर पवित्र का लहू का कहर चढ़ाना चाहता है। वो हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6:11। बस कुरिन्थियों का 6:11 भी पढ़ते हैं। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा के धोए गए पवित्र हुए धर्मी ठहरे। देखो, हम तो पहले कैसे थे, बीमार थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, लेकिन इसे पॉल हमें समझा रहा है, हम कितने ऐसे ही थे। नवा वचन पढ़ते तो उसमें देखा है, क्या तुम नहीं जानते, नहीं 10-15, चोर तो लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले थे, अंधेर करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन 11 कहता है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से कैसे धोए गए, उसके पवित्र से हमें धोकर उसने शुद्ध किया। उड़ाओ पुत्रों को लेकर आया, जब आया उसके गंदे कपड़े थे, उसके पास कुछ नहीं था, कितने दिन से वो नहाया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहलाया, धोया और फिर अच्छे पवित्र वस्त्र पहनाए। इतना ही नहीं, वो बेटा खोया था, उसके लिए उसने एक अच्छी मेजबानी रखी गई और लोगों को बुलाकर खाना भी खिलाया।
आज तुम्हें और हमें प्रभु यही करना, हमारे जीवन में वही ऐसा ही करना चाहता है। और परमेश्वर की आत्मा से हम कैसे धोए गए और फिर पवित्र हुए और धर्मी भी ठहराया परमेश्वर ने हमें, हमें और आपको। और भी एक वचन पढ़ेंगे हम और प्रार्थना में जाते हैं। इपिशन 2:3-6 तक पढ़ेंगे। इपिशन 2:3-6 तक पढ़ेंगे। देखो इधर क्या बोलता है, इनमें से हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की मन की इच्छा को पूरी करते थे। पहले हम कैसे थे, अपनी इच्छा पूरी करते थे, अपन जैसे चाहिए वैसे रहते थे। कभी प्रार्थना किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कभी वचन पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन कभी वचन पढ़ा ही नहीं। जब भी मन को अच्छा लगता तब वचन पढ़ते थे, जब भी अच्छा लगता था तभी स्तुति करते थे, कई बार तो स्तुति भी नहीं करते थे, ऐसे ऐसे हम दिन बिताते थे। लेकिन परमेश्वर आज इधर कह रहा है और शरीर पे मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव के क्रोध में संतान थे। और हमारे स्वभाव भी खराब थे, किसी की गाली देना, किसी की चुगली करना, किसी के ऊपर गलत बातें बोलना, ऐसे हमारे लोग के स्वभाव थे। लेकिन इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उससे बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया सबके अपराध के कारण मरे हुए थे मसीह के साथ जिलाए गए और अनुग्रह से हमारा और आपका उद्धार हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमारे अच्छे कर्मों का कारण नहीं, ना ही कुछ अच्छी बातों के द्वारा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह द्वारा तुम्हारा और हमारा उद्धार हुआ। तुम्हारा और हमारे और आपके पाप धुले गए, उसने हमें शुद्ध धोकर दिया, जिस तरह उड़ाव पत्र को धोकर शुद्ध किया गया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, वैसे तुम्हें और हमें भी प्रभु कपड़े पहनाना चाहते हैं और तुम्हें हमें वैसे ही वो शुद्ध करना चाहते हैं, तुम्हें और हमें वैसे ही उसके बंधन से हमें आजाद करना चाहता है। और एक वचन पढ़ेंगे 1 John 4:10 जॉन उसका 4 उसमें 10 पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जहां हम किसी को प्रेम करते हैं, जो उसको माफ कर देते हैं, उसके और कोई प्रेम नहीं। आज हम किसी को माफ नहीं करना चाहते, हम किसी की निंदा करते, किसी को गलत समझते, किसी को बुरा कहते, कहने की ताकत नहीं होती, तो ऐसे मन के मन अंदर उससे रुठ जाते, उससे बातें करना बंद कर देते, ऐसे हमारे स्वभाव है। आज भी हम लोग बदले नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन साफ कहता है हमें बदलना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें उसने धोया, शुद्ध किया, ऐसा आज का वचन कहता है। इपिशन का वचन बहुत ही अच्छा हमें कह रहा है कि उसने हमें धोकर शुद्ध किया, हमारे पापों को उसने ले लिया, हमें धर्मी बनाया, हमें अच्छे वस्त्र पहनाए, हमें और हमारे लिए अच्छे भोजन भी दिया उसने। आज प्रभु तुम्हें हमें धोकर शुद्ध करना चाहता है, अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता है और हमारे ऊपर वो आत्मिक चार आत्मिक कपड़े में देना चाहता है। आइए मां के बंद करें। धन्यवाद प्रभु, हमें क्षमा कर राजा,
हमारे पापों को तूने उठा लिया, हमारा दर्द को ले लिया, हमें शुद्ध किया। हम प्रार्थना करते हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे बेटियों के जीवन में कार्य कर, जो पीड़ा में दुखों में जिनका उद्धार नहीं हुआ है उन्हें तेरे करीब लेकर आ, और हर बेटा बेटी इनका उद्धार हो जाए, तेरे राज्य में बढ़ते जाए और उनकी परिस्थिति तो बदल। कई बेटियां बांझ दबी हुई है, उन्हें बदल, उनका उपाय तू ही कर सकता है प्रभु। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर तेरी ओर से आएगा प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर।